0: उपकार उमाहा।
1: ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा।
0: ब्रह्म ज्ञानी कह होए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला।

0: नमस्कार।
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता।
0: ज्ञानी मुक्त जुक्त जिया का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता।

0: वैष्णो सोजे से ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते होए पिन्न
1: कर्त होए नह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: काहू फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भक्त की तन संग।

0: जिसके
1: हृदय गरीबी बसावे नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे
2: तनवंता है क्या गर्भावे तेन समान कर संग न जावे
1: भलस्कर मानुक

0: भक्तहीन संत निंदक दुखियार दीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सर्व अभियोग
0: संत की निंदा दुख में दुख नानक संत पावे।

संत कै दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है। संत के दुखी की जड़ के चनाए, अपन बीज आपे ही खाए। संत का दुखी इउं बिलाए, जल जल भून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी छुटे अकेला, जो गुआर तिल खेत माहे दोहेला। कित निंदक का तुरही पया, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है।

0: भोग जो तिस बिन दूसर हुआ न होग।
1: जब जन सदा सदा दिन रहनी सबते ऊच निर्मल करनी।
0: हर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया।
1: जहाँ के मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रतीत।
0: भक्त भक्त सुनिए ते लोए जाके हृदय एक को हुए।
1: सच करनी सच ताकी रहत सच हृदय सतमुख कहत।
0: सची दृष्ट सच्चा आका

0: सतत अनेक सतपुर पूरण विवेक
1: काहू बोल न पहुँचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी
0: निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाए
1: अनेक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरे
0: सत बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जप

0: सुभर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध कै संग
1: त्याग अंतर प्रकाश अंतिम लिव लाग
0: वड़ पागी जपे

0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरा नाम जपावो।
1: भक्त पाए तरिये संसार बिन भक्ति तिन तन होसी चार।

0: भगवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किसको गनी
1: जब
0: निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव कहो कित ठाए
1: जब आपे आप अपनी ज्योत तरे तब कवन कब कत डरे
0: अपन चलते आप करने हार नानक ठाकर अग्नि अपार।

0: विनाशन।
1: जब पूर्ण कर्ता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए।
0: अवगत गोचर प्रभ एका तै चित्र गुप्त किस पूछत लेखा।
1: जब नारंजन गोचर अगाते तब कौन छुटे कौन बंधन बाते।

विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तन खेह, गावे को जी लै फिर देह, गावे को जपै दुसै दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर। कथना कथीना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुकुम चलाए राहो नानक, युग सह वे प्रवाहो, साचा साहिब साच नाए भाख्या पाओ अपार, आखे मंगे देह देह दात करे दातार। फेर के अगे रखिए जित दसै दरबार, महाओ के बोलन बोलिए जिस सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच ना उड़ियाई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोह दुआर। नानक एवै जानिए सब आपे सचे अर्थ, आपे आना जाए कीता ना होए आपे, आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुणी निधान। गावे सुनिए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख घर लै जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहिया समाई, गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही कहना कथना जाई, गुरा इक देह बुझाई सबना जिया, का इक दाता सो मैं विसर ना जाई, तीर्थ नावा जे तिस पावा बिन भाणे के नाए करी। जेती सिर ठुपाई वेखा मिण करमा के, मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणक, जे इक गुर की सिख सुनी गुरा इक देह बुझाई सबना जिया, का इक दाता सो मैं विसर ना जाई। जे जुगचार यार जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चलै, सब कोई चंगा ना रखाए कहे जस कीरत जग ले, जे तिस नजर ना आवी तां वात ना पुछै के। कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुण मंतिया, गुण दे तेहा कोई ना सुजई, जे तिस गुण कोई करे।

जन्म मरण निवार हर जप, सिमर स्वामी सोए आद। आरंभ तो जदों तो संसार बनया है, अंत अखीर तक दयाल पूरन वो परमात्मा दयालु है। इस शब्द का अर्थ यह भी बन जाता है, जदों हे इंसान जदों तेरा जन्म होया उदों तो लैके जदों तेरा अंतिम समा आना है, परमात्मा नू याद करी, वो तेरे ते दया करनगे। जदों तो संसार बनया है परमात्मा दयालु है। हे इंसान जदों तेरा जन्म हो गया ना, वो परमात्मा तेरे नाल सदा अंग संगे अपहंगंग विभुक्त है। तिस बिना नहीं कोई, उस परमात्मा तो बगैर होर कोई नहीं, वो मालिक है, सदा ही तेरे नाल है। जन्म मरण निवार हर जप, उस हरि नू जपया कर। जन्म मरण दा गेड़ उहदे जपण दे नाल उहने तेरा कट देना है। सिमर स्वामी सोए, सिमर करिया करो, उहनू याद करिया, उहदी बाणी दा सिमरन करिया।

मुक्त पाइए साध संगत, बिन सजाए अंधार। पातशाह कहिंदे ने दुनिया के जिन्ने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, सिमरतियां हैं, शास्त्र हैं, उन्हां सारे ग्रंथां का इको ही एक निचोड़ है, केड़ा? मुक्त पाइए साध संगत। मुक्ति किवें मिलेगी जी? गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने साध संगत विच आके बैठ जाएं, मुक्त हो जाए। बिन सजाए अंधार, तेरे अंदरों जिहड़ा विकारां दा हनेरा है ना, वह दूर हो जाए।

गौड़ी सुखमनी महल्ला पंजवा श्लोक को ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुर ए नमः जुगाद गुर ए नमः सत गुर ए नमः श्री गुरुदेव एह नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावहु कल कलेश तन माहे मिटावहु सिमरो जास बिसंबर एकै नाम जपत अगन तनैकै वेद पुराण सिमर सुदाखर किने राम नाम का खर किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी न आवे कांखिए कै दर्श तुहारो नानक उन संग मुहे उधारो सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम भगजना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ के सिमरन गर्भ न बसै प्रभ के सिमरन दुख जम नसै प्रभ के सिमरन काल पर हरै प्रभ के सिमरन दुष्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ के सिमरन नंदिन जागे प्रभ के सिमरन पवन व्यापै प्रभ के सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निधान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीरथ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होय सुपला प्रभ कै सिमरन सुफल

जय प्रभु के सिमरन सब की सुजय, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहे समाए।

प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन परवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमोताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से

प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे।

जुड़ेब। प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सह समानी, प्रभु के सिमरन है चल आसन, प्रभु के सिमरन कमल विगासन।

नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बे दो पाए। हर सिमरन पय सिजती दाते, हर सिमरन नीच चौकुंठ जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सर

प्रभु निर्मल करम। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उदम में उदम भला, हर का नाम जप हो जी सदा।

सुत प्रात मीत बनता संग सह। जे प्रसाद पीवह शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमला। जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल सामग्री।

खोटी संग रचे, साच छोड़ झूठ संग मचे। जो छड़ना सो अस्थिर कर्माने, जो होवन सो दूर पराने, छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाय।

जे प्रसाद छति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माए। जे प्रसाद सुगंध तन लाभ है तिसको सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याए त्या बन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हडाव है तिसे त्या कतवर लुभावे। जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पर ताका जस गावी जय। जे प्रसाद तुस

प्रसाद। जय प्रसाद बोल है अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सह जय बसना, जय प्रसाद हस्त कर चल है, जय प्रसाद संपूर्ण फल है।

साथ के संग अगोचर मिलै, साथ के संग सदा प्रफुल्लै, साथ के संग आवह बस बंजा, साथ संग अमृत रस पुंजा। साथ संग होय सब की रेन, साथ के संग मनोहर बैन, साथ के संग न कतहु तावै, साथ संग अस्थित मन पावै। साथ के संग माया ते भिन्न, साथ संग नानक प्रभु सुप्रसन्न, साथ संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत। साध संग

जाको अपनी करे बख्शीश ताका लेखा ना गने जगदीश जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आ बनाई नानक जीवे देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करण करावण सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो ज्योतिष भावे सोई फुन थियो कभू ऊंच नीच मह बसे कभू सोग हरख रंग हसै।

विश्रम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे हंकार नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस को जो पला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मन होए कहो नान ता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझते काछ होए तब इस कौ सुख नाही कोई जबे जाने मैं किस करता तब

में फिरता। जब तारे को बैरीमी तब लगन है चलना ही चीत, जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे। सहस खटे लख कौ उठ तावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे, अनक भोग बिख्या के करे नह तृप्तावे, खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। नाम रंग सर्ब सुख होए बटभागी, किसे प्राप्त होए करण करावण, आपे आप सदा सदा नानक जाप करण करावण, करने हार इसके हाथ कहाँ बीचार, जैसी दिष्ट करे तैसा होए आपे आप, आप प्रभ सोए जो किश कीनो सो, अपने रंग सब ते दूर सब हु कै संग, बूझे देखे करे विवेक आपे एक आपे, अनेक मरे न बिनसे आवे न जाए, नानक सत हिरिया समय आप, उपदेशे समझे आप, आपे रचया सबके साथ, आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका ओह करने हार, उसते पिन कहो किछ होए, थान तनंतर एक कै सोए, अपने चलते आप करने

कछ करे सोई सुख मान भूला कह फिरे अजान कौन बसताई तेरे संग लपटरे हो रसलो भी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत सेती घर जाहे जिस वक्त

अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख मानुक की तू प्रीत त्याग तिस्ते परे नाही किश कोय सरनुरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद सा तेरी की चरणी पाओ नानक के मन हो अनराओ वंशा पूर्ण शरणा जोग जो कर पाया सोई होग हरण परण जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सद जाके सर्व दुख सुनिए घर ताके राज में राज जोग में जोगी तप में तपीसर ग्रस्त में भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जा की लीला कीमित नाहे सगल देव हरि अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावहि से

ब्रह्मांड नाम के तारे, स्मृत वेद पुराण नाम के तारे, सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे, आकाश पाताल नाम के तारे, सकल आकार नाम के तारे, पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे, सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत, सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहि सुमाणी, सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करनी, निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसै सब भली, सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास, सत नान गुरते पाई सत वचन साधु उपदेश, सत तेजन जाके हृदय प्रवेश, सत निरत बुझै जे कोई नाम जपता की गत होए आप, सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिष्ट सुर करने हार, अवर ना बूझ करत विचार करते कि मित ना जाने किया, नान जो तिस भावे सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्मा जिन बूझै तिस आया स्वाद, प्रभ के रंग राज जन रह गुर के बचन पदार्थ लय, ओए दाते दुख काटन हार, जाके संग तरह संसार,

का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रपरा लणहारा, सेवकी राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ तारे नान, सो सेवक सा सा सुमारे, अपने जन का वरदा ढाके।

नीकी कीरी में कल राखे पसम करे लश्कर कोट लाखे जिसका सास न काटते आप ताको रख देकर हाथ मानस जतन कर्तव्य पात इसके कर्तव्य थे सब जाते मारी न राखे अबर न कोई सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे पुराणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी वारंग बार बार प्रभ जपिए पिय अमृत मन तंत्र पिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किछ अवर नाहीं दुष्टाया नाम तन नापों रूप रंग नाम सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तुरताने मंत्र नामे नाम समाने उठत बैठ सोवत नाम कहो नानक जन के सतकाम बोलो जस जे बादन रात प्रभ अपने जन की नींदात करहें भगत आत्म के चाय प्रभ अपने स्यों रह समाई।

चित निर्मल हो, तुम्हारो चित चरण कमल राखो, मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे। आप जपो अभरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सार भूत सत हर को नाओ, सह सुपाय नान गुण गाव तेरी उतर सुमैल, बिन सुजाय हो मैं बिख पैल हो, हे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम सुमाल। छाड़ सियानप सगली मना, सास संग पावे सच तना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगह जयकार, सर्ब निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जाप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे, एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहो प्रभ आप, अनक विस्तार एक ते भय, एक आराध पराछत गई।

कुन संग मोहे उदारू सुखमनी सुखमृत प्रभु नाम। भगत जना कह मन विश्राम रहाओ प्रभु के सिमरन गरम नम बसै प्रभु के सिमरन दुख जम न सै। प्रभु के सिमरन काल पर हरे प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे प्रभु के सिमरन अंदिन जागे प्रभु के सिमरन भवन व्यापे प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग प्रभु के सिमरन रिसिद नौ निध प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान।

के सिमरन होए सुफला, प्रभ के सिमरन सुफल फला। से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा। प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ के सिमरन सब के सुझै। प्रभ के सिमरन नाहीं जप त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए। प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते। प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरुष प्रधान। प्रभु को सिमरे से बहमोता जे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे। प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलहारी।

हर हर अमृत बरखे, भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ऊट, हर के नाम द्रे जन कूट, हर जस करत संत दिन रात।

कसब है भरपूम दान न्युली क्रम करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अति साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी हम मैं मैल न जावे हर के नाम समसर कचनाए नानक गुरमुख नाम जपत गत।

कौड़ी संग रचे सा छोट झूठ संग मचे जो छटना सो स्थिर कर माने जो हुवन सो दूर पराने छोड़ जाए जिसका श्रम करे संग साई तिस पर हरे चंदन लेप उतारे तो ही गर्द प्रीत बसम संग होए अंधु

के अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार। जो तुम पाने तिन प्रभु जाता, नान कुंजन चरण प्राता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप है माने। आप है आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बजावत। निरा उपाव स्यानब सगल तेरह, सबका जाने आत्म की रहत। जिस भावे तिस

छत्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माही। जय प्रसाद सुगंधत तन लाभ है तिसको सिमरत परम गत पाव है। जय प्रसाद बस है सुख मंदर तिसह त्याय सदा मन अंदर। जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पै सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याये त्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटम्बर अंडावै तिसह त्याग कतव लुभावे। जय प्रसाद सुख सहे सोई जय मन आठ पर ताका जस गावी जय। जय प्रसाद तु सब

दृद बसय नान कुदरे साध सुन रसय साध के संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुन गाओ साध के संग न मनते बिसरे साध संग सर पर निस्तरे साध के संग लगे प्रभु मीठा साधु के संग घट घट डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध के संग मिटे।

प्रसाद को बिरला लाख है, सो क्यों विसर जे बिखते काढ़ जन्म जन्म का टूटा गाढ़ गुरपुर दत्त यह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एक काम आन त्याग जप हो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जप हो अवरह नाम जपाव भगत पाए तरिय संसार बिन भक्ति तन हो सिसार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नास नानक नाम जपहु गुणथास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुवाओ नेत्र हो पेख दस सुख होय मन बिकसै साध चरण तोय भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावै संग एक बस्त दिजे करमय आउ गुरु प्रसाद नाम जप लया ताँ की उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाई प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपा।

हम निर्गुणियार निजाजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्ब बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमखार के गुण गाए अनक राज भोग वड़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपति हर हर नीत भली सो करणी सो वतन वंत।

निर्मल पुरख पुरख पात होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कौमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शाल क्षेत्र लगत कहो कीस।

सगन अब सगन कहाँ विचार। जय अपन ऊच अपन आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कही है चेरा। बिसमन बिसम रह बिसमाद आप नानक अपनी गत जान आप। जय शाल अशेद अभेद समाया उहा किस है व्याप्त माया। आप सुखाओ आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश।